0: सांपे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है?
2: गा।
0: अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो
0: चल वापस आ जा फिर से अपनी जगह पे।

0: सारे गा मा वन टू थ्री फोर
1: सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा सारे गा मा सारे गा का सारे मा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा मांगा रे सा
2: This is Talk 100.3.

0: कल खत्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 140 रन बनाए थे। 140 में टॉप स्कोरर थे हैरी ब्रुक, 56 रन उन्होंने बनाए थे और 5 विकेट काइल जेमिसन ने ली। उनका नाम लीडर बोर्ड पे आ गया, वो ऑनर्स बोर्ड जो होता है लॉर्ड्स के वहां पर आ गया। उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करने जब आई तो 113 रन पे वो ऑल आउट हो गए। 38 का टॉप स्कोर काइल जेमिसन ने ही बनाया, लेकिन 5 विकेट ओली रॉबिन्सन ने लिए, तो भाई रॉबिन्सन का भी नाम वहां पर बोर्ड पर आ गया तुरंत। ठीक है, फिर इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो फिर 57 रन्स टॉप स्कोरर एमिलियो गे एंड टीम टोटल 226 रन्स। यहाँ पर मुझे लगा कि भाई 254 का टारगेट अब तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 41 रन डेवॉन कॉनवे, 44 रन्स ग्लेन फिलिप्स, उसके अलावा कोई भी नहीं। 18 रन केन विलियमसन ने बनाया, बाकी सारे सिंगल डिजिट में। टॉम लेथन 0, विल ओरूर्क 0, डैरल मिचेल 0 एंड मैट हेनरी 0। चार चार तो बदगे निकली हैं। रचिन रविंद्र 8 रन बनाए, टॉम ब्लंडल ने 4 रन बनाए, नेथन स्मिथ ने 4, काइल जेमिसन ने 6, टोटल 138 रन। बट दैट वॉज नॉट इनफ, 5 विकेट गस एटकिंसन के नाम, यानी कि 3 लोगों के नाम ऑनर्स बोर्ड पे चले गए एक ही मैच के अंदर। भाई बड़ा रेयर होता है ये होना, बट हो गया। 5-5 विकेट 3 प्लेयर्स ने लिए थे। सो ये टेस्ट मैच भी खत्म हुआ। इसमें सबसे खुशी की बात मेरे लिए तो ये रही कि भाई दोनों इनिंग्स में जो रूट जो है उन्होंने काम जो है वही किया जो अपने से एक्सपेक्टेड था उनसे, कि भाई कम रन्स बनाए, 1 रन पहले इनिंग्स में, 8 रन दूसरे इनिंग्स में, कुल मिला के 9 रन्स, और सचिन पाजी के रिकॉर्ड से दूर। बस यही सुकून मिला मुझे यहीं पर, ठीक है ना। सो ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, इसका अगला टेस्ट मैच भी आने वाला है। ऑब्वियसली इट्स अ नाइस गुड लॉन्ग सीरीज। सेकेंड टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा 17 जून को। बीच में टाइम होता है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रिकूपरेट करेंगे, और फिर तीसरा टेस्ट मैच जो है 25 जून से शुरू होगा। तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं, हम ऑब्वियसली कीपिंग एन आई ऑन दैट टेस्ट सीरीज एज वेल। पाकिस्तान के भी मैचेस चल रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। नील के साथ रहिएगा TSV पे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ऑन टॉक 100.3। एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इफ यू वॉन्ट टू आस्क एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, मोर देन हैप्पी टू आंसर। 0586861003 दिस अ मैसेज दैट्स कम इन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग द फॉलो ऑन रूल। आई न्यू वॉट अ फॉलो ऑन वॉज बट डिड नॉट नो द 200 रन डिफरेंशिएटर। क्या बात है अमित का मैसेज। अमित थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड नाइस लॉन्ग मैसेजेस। वी कैन ऑलवेज सेंड इन दोज मैसेजेस। 0586861003 माई व्हाट्सएप नंबर। नील के साथ ऑन TSB टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस ऑन टॉक 100.3।
1: TSB टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस टॉक 100.3। ब्रिज द गैप बिटवीन ब्रेकिंग न्यूज एंड द पीपल इट अफेक्ट्स। Wake up to Daybreak with Muriel Deesa on Talk 100.3. With expert insights from industry leaders to authorities, real-time answers and voices that matter. Daybreak, weekdays from 7 to 11 a.m. Smart news, real conversations. Brought to you by Symbolic Developments. Only on Talk 100.3. Talk 100.3. Journal on TSB. The latest share market and stock market news and updates on Talk 100.3.
0: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. We'll have a quick check on what's happening in the financial markets. Dubai Financial Market General Index today closing at 0.57% lower. A steep dip at the start of the day. And uske baad mein dheere dheere upar to aaya par utna nahi jitna expected tha. MR down by 0.88%, Talabat down by 1.58%, Emirates NBD down by 1.48%, and MR Developers down by 2.43% in the day's trade. Some of the movers today, 5% down was National General Insurance and Dubai Refreshment Company, also down by 4.96%. Gainers of the day, Dubai National Insurance up by 4.5%, Commercial Bank of Dubai up by 2.3%, and the Manath Holding up by 1.58% in the day's trade. Main hoon Neel and this is TSB Talk Sport and Business on Talk 100.3, keeping you company all the way till 7 o'clock. And if you have a question with regards to anything that has to do with sport, more than happy to answer, or even if it is finance, I'm here all the way till 7 o'clock. Aap pe agar koi sawal hai, you can always call us on 800-81003. It's a toll free number. Iska matlab ye hai ki aapko कॉल करना अगर है तो बिंदास आप कॉल कर सकते हो, इसके पैसे नहीं लगेंगे। नील के साथ ऑन TSB टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस।
1: TSB टॉकिंग स्पोर्ट्स बिजनेस एंड मोर। टॉक 100.3।
2: BBC प्रीमियर लीग अपडेट फ्रॉम द होम ऑफ प्रीमियर लीग फुटबॉल। Hello, I'm Joe Wilkinson at the BBC.

0: Sports Centre. The World Cup warm-up matches continue. The tournament is just 3 days away now and Premier League players are heavily involved across the board. But there were worrying scenes during Denmark's match against Ukraine. The former Tottenham and Manchester United midfielder Christian Eriksen collapsed on the pitch and the match had to be abandoned. Eriksen had previously collapsed on a pitch due to a cardiac arrest in 2021 and was fitted with a defibrillator. Katie Gornall reports.
1: Eriksen was able to walk off the pitch by himself. That was confirmed by Denmark's national team doctor, Morten Boesen. Now, the national team released a statement from him. I'll just read a bit of it to you now. He says that Eriksen was well under the circumstances. As I see it, he says, the pacemaker responded as it should. He was briefly unconscious, but regained consciousness very quickly, and we were quickly in contact with him. He'll now undergo further examinations at hospital to determine what caused the incident.
0: Elsewhere, Arsenal's Martin Odegaard scored as Norway drew with Morocco. England beat New Zealand on Saturday and they face Costa Rica on Wednesday in their final warm-up match ahead of the tournament. In the meantime, the England and Everton goalkeeper Jordan Pickford says Thomas Tuchel has recognised the importance of players being able to take their mind off football too.
2: We're here to train, but we're here when we've got downtime. If people want to go out, take families off, if they want to go to the shops or for a meal or play golf, which I like to do. That's what it's there for, because we know once we get to Kansas, we know it's game on. This 10-day block's about getting the work in your legs, getting the early messages into our brains, and once we hit Kansas, we'll be ready.
0: And for more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
3: BBC Premier League update from the home of Premier League football.
4: This is Talk 100.3.
5: Hello and welcome to TSB Talk, Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. And we're just right in the smack center of the cricketing action that's happening all around the world. And as far as cricket is concerned, Australia in Pakistan and Pakistan winning the three-match ODI series 2-1. Incredible start to the leg there by Pakistan. But at one point in time, it looked like that things might have gone haywire if they hadn't had taken the control. To talk in detail about that series, I've been joined by Asif Khan. He's a journalist and TV anchor on PTV Sports. Asif, welcome on TSB. How are you doing today?
6: Thank you very much. I'm doing fine.
5: Asif, is series ke baare mein bataye, Australia coming to Pakistan. पहले तो ये बताएं कि माहौल कैसा होता है जब भी एक इंटरनेशनल सीरीज होती है पाकिस्तान में यू नो फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव किस हिसाब से वेलकम किया जाता है कंट्रीज का
6: वेलकम बड़ा अच्छा होता है क्योंकि अभी रिसेंटली पीएसएल खत्म हुआ था
5: जी
6: तो उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी शामिल थे जैसे मानस लबुशेन वो भी आए थे तो पीएसएल के बाद वो पाकिस्तान आए दोबारा तो पाकिस्तान में अच्छा वेलकम मिला फॉरेन टीम्स को बहुत अच्छी तरह से वेलकम पाकिस्तान में हमेशा किया जाता है तो इस दफा भी कोई मुख्तलिफ चीज नहीं थी उनको उनको रखा गया बहुत अच्छी तरह उनकी सिक्योरिटी वो स्टॉप नॉच और बहुत अच्छी तरह से उनका देखभाल की गई उनको मकामात भी कराची तो नहीं बल्कि वो लाहौर और पिंडी में आए थे
5: जी।
6: तो उनको तो इन पिंडी एंड लाहौर वहां की भी उनको विजिट कराया गया तो देवर गुड देवर टेकन केयर ऑफ वेरी वेल
5: नाउ यू नो The hospitality of Pakistan is incredible, and I've heard this so many times from so many international cricketers that we come in contact with. And every time we speak about, you know, a tour to Pakistan, the first thing that comes to their mind, apart from cricket, is food. And is there a special plan? कि भाई इनको और कुछ you know cricket तो जैसी definitely अच्छी होनी है, पर खाना एकदम जबरदस्त होना जरूरी है. मेजबानी जो है वो number one होनी चाहिए.
6: हाँ, खाने के एतबार से Pakistan बहुत अच्छा है बहुत डाइवर्स है यहाँ पर जो खाने की वैरायटी है फ्रॉम लाहौर टू पिंडी टू कराची फॉर दैट मैटर आप आए तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी खाने में हलीम बहुत शौक से खाया जाता है निहारी है बिरयानी का कैपिटल माना जाता है कराची को वर्ल्ड बिरयानी कैपिटल माना जाता है तो उस हिसाब से वैरायटी बहुत ज्यादा है मिर्च मसाले थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन वो भी अब आदि हो गए ये फॉरेन प्लेयर्स भी आते जाते रहते हैं तो आपको भी पता है इंडिया हो पाकिस्तान हो बांग्लादेश हो यहाँ खाने का अलग मिजाज है अलग किस्म का खाना होता है और हम लोग खाने के शौकीन है सारे पाकिस्तानी तो बड़ी अच्छी तरह से इनको रखा जाता है
5: नहीं बिल्कुल, अब यू नो ये मेज़बानी की तो बात हो गई, खाने की बात हो गई, क्रिकेट की बात करते हैं। 2-1 से पाकिस्तान सीरीज जीती है। पहला मैच जो है बहुत ही ऐसा लगा कि कंफर्टेबली हाथ में आ गया था, बट सेकंड मैच में अच्छा पुशबैक दिया था ऑस्ट्रेलिया ने।
6: जी हाँ, ये विकेट जो बनाई गई थी पाकिस्तान ने वो बहुत ज्यादा स्पिन नहीं हो पिचेस की वजह से थोड़ा सा मुश्किल बैटर्स को हुई बहुत ज्यादा, और स्पिनर्स काफी ज्यादा डोमिनेट किया इन पिचेस पर। पाकिस्तान ने मैच जीत तो लिए, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से मैच जीते, लेकिन बहरहाल विन इज अ विन। पाकिस्तान ने तीसरी सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ऑस्ट्रेलिया में भी एक सीरीज जीती थी पाकिस्तान ने 2024 में, उसके बाद फिर अगले बरस जीती, फिर अब ये सीरीज भी जीती। तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर होता जा रहा है। इतना शानदार परफॉर्मेंस इस सीरीज में नजर नहीं आई, लेकिन इट वाज अ हार्ड फॉर सीरीज फॉर बैटर्स, और तो पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, अपने स्पिनर्स का, अपने फास्ट बॉलर्स का भी कभी कभी इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया।
5: राइट,
6: तो पाकिस्तान जीत गया। पाकिस्तान की बहुत अच्छी कामयाबी है। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर दो लड़के आए, उनके तीन मेन प्लेयर्स तो आए नहीं, कमिंस, हेजलवुड वगैरह
5: जी
6: वो नहीं आए। उनके बावजूद ये सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी फाइट दी, उनके बॉलर्स बड़े अच्छे थे, फास्ट बॉलर तो एक खास तौर से बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, जो राइट आर्म थे वो नए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी लेंथ पर बॉल किया। लेकिन पाकिस्तान की जीत बहुत अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतते हैं आप। ऑस्ट्रेलिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की रैंकिंग है 6th या 5th, पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग है। तो पाकिस्तान की जीत बहुत अच्छी है, बहुत कारामद है। वर्ल्ड कप पहले पाकिस्तान को ये तैयारी का मौका मिला है, क्योंकि पिचेस मुख्तलिफ होंगी साउथ अफ्रीका में,
5: बिल्कुल,
6: जिम्बाब्वे में, नामीबिया में, लेकिन जीत जीत होती है, उससे एतमाद मिलता है और पाकिस्तान इसको लेकर आगे चलेगा।
5: नहीं, जाहिर सी बात है, क्योंकि जो एक मोमेंटम होता है क्रिकेट में, हम अमूमन कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक विनिंग मोमेंटम अगर लेके चलें आप तो। बट साथ ही साथ एक चीज़ पे यकीनन खुशी होगी फॉर ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, एंड दैट इज़ बाबर आजम का फॉर्म। 3 में से 2 मैचेस में अच्छा स्कोर किया है बाबर ने, एंड दिस इज़ अ लिटिल साइन दैट यू नो एक रिलायंस जो है एक बड़े प्लेयर के ऊपर वो एक अच्छी चीज़ हो रही है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप।
6: जी हाँ, बाबर आजम की जो क्रेडेंशियल हैं उस पर बात करना तो बेकार है, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबर ने अपने नंबर जो शो किए हैं उसके नंबर बहुत अच्छे हैं। वनडे क्रिकेट में, T20 में भी इज द हाईएस्ट स्कोरर, टेस्ट मैच में भी उसके नंबर अच्छे हैं। तो बाबर आजम, वो मैंने कहा ना, जब मैंने पहले कहा था कि पिचेस इतनी ज्यादा आसान नहीं थी फॉर बैटिंग,
5: right.
6: तो बाबर ने लिया बहुत टाइम लिया, आपने लास्ट मैच में भी देखा,
5: जी बिल्कुल,
6: तो टाइम बहुत ज्यादा लिया, तो वो टाइम उसका लेना बनता था। वो स्ट्राइक रेट की डिबेट एक चलती है कि, लेकिन स्ट्राइक रेट हर जगह मैटर नहीं करता, जो पिच की कंडीशन है उसके हिसाब से खेलें, और बाबर यूज्ड ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड प्लेड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा खेला। इस नंबर पर वो आते हैं, उस नंबर पर बहुत मुश्किल होती है मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को खेलना, फास्ट बॉलर्स को खेलना, तो बहुत अच्छी बैटिंग की बाबर आजम ने। उनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है, इज द टॉप, वन ऑफ द टॉप बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो बाबर आजम की जो कंट्रीब्यूशन थी सीरीज में वो बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह से वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखेंगे।
5: मुझे माँ सदाकत के बारे में बताइए, उनके बारे में काफ़ी बातें होती हैं, उनको भी देखा भी है रीसेंट टाइम्स में, पर आप बताएं कि इनका फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं एक यंगस्टर का।
6: यंग है अभी, अंडर 19 से पाकिस्तान की आए हैं, और रिसेंटली PSL ने बहुत अच्छा इन्होंने कोशिश की थी, PSL ने भी इतना अच्छा ये नहीं कर सके हैदराबाद की टीम के लिए खेले थे अभी, तो खैर कल इनको अपेंडिक्स का इनका प्रोसीजर कोई हुआ है, सर्जरी इनकी हुई है, तो वो 2-3 हफ्ते के लिए तो वो बाहर हो गए हैं। लेकिन माँ सदाकत, उसके साथ और भी बच्चे हैं, शामिल हुसैन है, उसके अलावा टेस्ट मैच में अगर देखें तो गाजी गौरी है, अब्दुल्ला फजल है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। और फिर फास्ट बॉलर्स में अगर बात करें तो अली रजा है, हुनैन शाह है, उबैद शाह है,
5: समीर मिन्हास,
6: फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, समीर मिन्हास, यस समीर मिन्हास, अरफात मिन्हास
5: जी,
6: तो यंगस्टर्स का एक अच्छा बैच बना है। आपको मैं बताऊं 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जो डेब्यू कराए हैं
5: जी
6: वनडे क्रिकेट में वो 19 डेब्यूज है, 19 डेब्यूज,
5: वाओ,
6: मोस्ट बाय एनी टीम इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने 9 डेब्यू ऑस्ट्रेलिया ने 9 डेब्यूज कराए, तो पाकिस्तान का ये तरीका रहा है कि नए नए बच्चों को चांस देता है, फिर उसके बाद अब वक्त है, थोड़ा सा वक्त रह गया है, उसके दौरान अभी पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल का कैंप भी आज से शुरू किया है, उसमें कोई 25-27 बच्चे उन्होंने उठाए हैं, नए बच्चे भी हैं उसमें, पुराने भी हैं।
5: okay.
6: व्हाइट बॉल का अलग कैंप है, रेड बॉल का अलग कैंप है, टू नेट अ टीम फॉर द वर्ल्ड कप जो आगे होने वाला है। वर्ल्ड कप एक तो 2027 में होगा नेक्स्ट ईयर, उसके लिए भी तैयारी होगी, फिर जो T20 वो जो वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है
5: जी बिल्कुल,
6: उसके लिए भी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। तो यंग बच्चों के साथ एक टीम बनाने की कोशिश है, अब देखिए इसमें कामयाबी होती है, होने की उम्मीद है कि कामयाबी होगी, और हम देखेंगे इस सूरत हाल को।
5: मैं आपसे आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है आपको भी आपके शो पे जाना है, बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा पाकिस्तान की विमेंस टीम के बारे में, जो पूरी तैयारी करके वर्ल्ड कप के लिए भी पहुंचे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं।
6: देखिए विमेन टीम ने जो तैयारी की थी ना, वो तैयारी कराची में हमने देखी, हमारे सामने ही हुई, जिम्बाब्वे की टीम यहाँ आई थी कराची
5: जी
6: लास्ट मंथ, जिम्बाब्वे की टीम वॉज वेरी वेरी यंग, जिम्बाब्वे की टीम में जो लड़कियां थी उनमें से दो लड़कियां ऐसी थी, एक प्रेशस जिसकी उम्र थी 42 ईयर्स, और एक उनकी और प्लेयर थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इस वक्त 29 ईयर्स ओल्ड, बाकी जो लड़कियां थी उसमें से वो 21 साल की मैक्सिमम 19, 17, 20, 21 ये इनकी एज थी, और उनकी कोच से है जो हमारी बात होती रही, उन्होंने कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट के बारे में, आप अगर अभी रिसेंटली उनकी उत्थान को आप देखें तो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने टेस्ट मैच क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली है,
5: राइट
6: जो साइकिल आया है, हालांकि वो टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट अमंग द टॉप 9 टीम्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो 12-13 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं, और उसके अलावा उनके जो डायरेक्टर आए हैं उन्होंने बहुत काम किया, और आखिरी बात ये है कि उन्होंने अपनी 3 अलग अलग टीम बनाकर न्यूजीलैंड भेजी एक टीम, एक पाकिस्तान भेजी, और अब एक टीम उनकी जाती है इंडिया, और उनकी कोच के मुताबिक जो पाकिस्तान टीम आई थी ये वीकेस्ट है टीम उनकी।
5: ओके
6: तो ये तैयारी पाकिस्तान ने तैयारी की थी, और पाकिस्तान ने बहुत उनको ट्राई की, मारा, शिकस्त दी थी, पहले मैच में 2 सेंचुरीज ऑलमोस्ट सेंचुरी हुई थी 98 ये थे, दूसरे मैच में 2 सेंचुरी सदर शम्स और फरोजा ने की, उसके बाद तीसरे मैच में भी पाकिस्तान ने हराया, लेकिन ये तैयारी हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये तैयारी सही नहीं है, हार गए
5: जी,
6: आपने मैच खेला आप हार गए, उसके बाद कल श्रीलंका से मैच खेला आप हार गए, तो तैयारी बिल्कुल उस मैार की नहीं थी, पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट बेहतर जरूर हुई है, तो पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट पाकिस्तान की 1997 से वर्ल्ड इवेंट में शिरकत कर रही है, 1997 में पहला वर्ल्ड कप खेला था, तो पाकिस्तान की विमेन टीम बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी गैप बहुत ज्यादा है द टीम्स एट द टॉप एंड पाकिस्तान, तो ये जब तक आप तैयारी में नहीं करेंगे तैयारी ठीक नहीं होगी, ये मुझे पाकिस्तान के एक साबिक कोच ने बताया था जो विमेन टीम के कोच थे, कि ये उनके टेन्योर में भी ये आए थी पेशकश कि आप जिम्बाब्वे से खेल लें, तो ही टर्न दैट डाउन, और वो आयरलैंड जाना, उन्होंने आयरलैंड वो गए थे और आयरलैंड में उन्होंने सीरीज खेली थी, तो ये तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहते हैं, और उसका नतीजा आपको नजर आया है।
5: चलिए हम होप करते हैं कि यू नो कि जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली है पाकिस्तान की टीम को उसका भी वो फायदा उठाएं, एंड वी प्रॉब्ली गेट टू सी सम गुड गेम्स कमिंग आउट, बट हाँ जी,
6: एक चीज मैं टच करना चाहूंगा, कल बहुत अच्छा लगा मुझे जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह साहब
5: जी,
6: उन्होंने सब लड़कियों से हाथ मिलाया जो कैप्टन है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान कैप्टन सना फातिमा सना
5: जी,
6: हाथ उन्होंने मिलाया, बहुत अच्छी बात है कि जैसा साहब ने ये बताया कि वो आईसीसी के चेयरमैन है,
5: बिल्कुल
6: बीसीसीआई से उनका ताल्लुक नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ गुड साइन।
5: चलिए गुड, सी दिस इज व्हाट इट इज, कि फाइनली इवेंचुअली इट इज द स्पोर्ट दैट विल ऑलवेज टेक द प्राइम फोकस मोर देन एनीथिंग एल्स, इजंट इट सर? Thank you so much, Asif Saab, aapke time ke liye. Through the World Cup, also we will try and stay connected so that we can have more conversations about ke Pakistan kis tarah se perform kar rahi hai throughout this World Cup.
6: Thank you very, very much. Thank you.
5: Thank you so much. Asif Khan, he's a sports journalist and TV anchor on PTV Sports. He's heading into his own show right now. But we thought, hey, why not sneak him out and have a quick conversation about what Pakistan versus Australia, the series was, and also the preparation for the upcoming World Cup, the T20 World Cup that's going to start in England, as far as the Pakistan women's cricket team is concerned. The first game of the T20 World Cup will be on the 12th of June, where England women's team will take on the Sri Lankan women's team. Well, this is what it is. I'm Neil Ocha. I'll take a quick break and come back right here on Talk 100.3.
4: This is Fan Network News from the BBC.
7: BBC News with Alan Smith. The Israeli military says Iran has launched a new barrage of missiles towards Israel as both countries continue to exchange rocket fire for the first time since the ceasefire in April. Earlier, Iran said it was beginning a week of continuous strikes in response, it said, to repeated violations by Israel of the ceasefire in Lebanon, including targeting the southern suburbs of Beirut. The Israeli strikes have taken place despite President Trump reportedly telling Prime Minister Benjamin Netanyahu to refrain from further attacks. Crude oil prices have jumped in response to the latest attacks in the Middle East. Brent crude rose by more than 5% to just under $100 a barrel. President Xi Jinping has arrived in North Korea for his first visit for 7 years. Before leaving China, he hailed what he called an invincible friendship between the two countries. In Armenia, the party of the Prime Minister Nikol Pashinyan has won crucial parliamentary elections with about 50% of the vote. The vote on Sunday was Armenia's first general election since a crushing military defeat by Azerbaijan in 2023. Officials in the southern Philippines say at least 15 people have been killed by an earthquake which struck off the island of Mindanao. Civil defense officials say more than 120 people were injured. The presidential election runoff in Peru is close as votes are being counted. The right-wing candidate Keiko Fujimori and her left-wing rival, the congressman Roberto Sanchez, are running neck and neck, with the lead narrowly swinging from one to the other. The Japanese city of Utsunomiya has closed all 94 of its primary and middle schools after a bear was seen in the city for the first time. The city authorities said the bear was spotted in a residential area near a park on Saturday evening. It remains at large after the last sighting early on Monday morning. And that's the world news from the BBC.
4: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you by insurancemarket.ae.

0: insurersmarket.ae. Over 15 years, I have stood by the UAE. I may sound a little fresher now, but I am still the same Alfred you love.
1: This is Talk 100.3.
2: Markets don't sleep, so why should you? Introducing Trade 24/7, the modern way to trade global markets anytime, anywhere. From precious metals and commodities to global indices, all in one powerful platform. With instant deposits and withdrawals, your money moves as fast as you do, backed by Acuity-powered signals, so you're always one step ahead of the market. Trade 24/7. Trade smarter, trade better.
3: Bro, imagine you book your dream home and then drive away in a brand new Jador T2.
4: Yeah, right. I wish.
3: I'm serious. Book at Symbolic Zen Residences Alforjan before 30th of June and boom, the Jador T2 is yours.
4: And the apartments?
3: Fully furnished with panoramic balconies, smart automation and modern closed kitchens.
4: I'm going now.
3: Visit Symbolic Experience Center on Sheikh Zayed Road or call 800-5300 now.
5: TSB Sports Headlines. Talk 100.3.
6: BBC Premier League Update from the home of Premier League football.
7: Hello, I'm John Wilkinson at the BBC Sports Centre. The World Cup warm-up matches continue. The tournament is just 3 days away now and Premier League players are heavily involved across the board. But there were worrying scenes during Denmark's match against Ukraine. The former Tottenham and Manchester United midfielder Christian Eriksen collapsed on the pitch and the match had to be abandoned. Eriksen had previously collapsed on a pitch due to a cardiac arrest in 2021 and was fitted with a defibrillator. Katie Gornall reports.
8: Eriksen was able to walk off the pitch by himself. That was confirmed by Denmark's national team doctor, Morten Boesen. Now, the national team released a statement from him. I'll just read a bit of it to you now. He says that Eriksen was well under the circumstances. As I see it, he says, the pacemaker responded as it should. He was briefly unconscious, but regained consciousness very quickly, and we were quickly in contact with him. He'll now undergo further examinations at hospital to determine what caused the incident.
7: Elsewhere, Arsenal's Martin Odegaard scored as Norway drew with Morocco. England beat New Zealand on Saturday and they face Costa Rica on Wednesday in their final warm-up match ahead of the tournament. In the meantime, the England and Everton goalkeeper Jordan Pickford says Thomas Tuchel has recognised the importance of players being able to take their mind off football too.
9: We're here to train, but we're here when we've got downtime. If people want to go out, see families off, if they want to go to the shops or for a meal or play golf, which I like to do. That's what it's there for, because we know once we get to Kansas, we know it's game on. This 10-day block's about getting the work in your legs, getting the early messages into our brains, and once we hit Kansas, we'll be ready.
7: And for more football news from the BBC, go to bbc.com/football.
6: BBC Premier League Update from the home of Premier League football.
1: Talk 100.3.
10: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. Conversations happening about the financial world. Saath hi saath sport ki duniya se bhi baatein ho rahi hain. Par sabse pehle ye baat ho rahi hai ki bhai, football World Cup bhi to aa raha hai. Hain? Uski taiyari kar rahe ho ki nahi? Kaun si team ko support kar rahe ho? Which team do you think will win the FIFA World Cup? What we'll do is, there are two things that we have planned for you in the coming days. One is a proper lineup structured for the FIFA World Cup ka build-up. Saath hi saath, we are also doing like a proper build-up towards the Women's T20 World Cup. So, ye do cheeze jo hain, aapko sunne milengi ekdam dher detail mein, as far as TSB is concerned. That is my promise. Boss, football, क्रिकेट दोनों ठीक है ना, दोनों के वर्ल्ड कप से एक साथ में हो रहे हैं और दोनों की एकदम डिटेल्ड चीज़ें जो हैं हम आप तक पहुंचाएंगे. एंड ऑब्वियसली इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट ईदर ऑफ देम, मोर देन हैप्पी टू आंसर, मोर देन हैप्पी टू यू नो पुट आवर हेड्स टुगेदर एंड डिस्कस देम विथ यू ऑन 0586861003. दैट्स माई व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कीजिए 0586861003. ठीक है ना, तो जल्दी से आप मैसेज कीजिए और अगर आपको कोई सवाल है क्रिकेट से लगकर, फुटबॉल से लगकर, तो हम बताएंगे. लेकिन एक सवाल हमेशा होता है एंड दैट इज के यार, ये क्रिकेटर्स तो अपने फिट होते हैं पर फुटबॉलर्स उनसे भी फिट होते हैं. So how do World Cup footballers need to be as far as fitness is concerned? And that is a little report from BBC for you right here on TSB.
11: Let's speak to Dr. Liam Anderson, who's Assistant Professor in Applied Exercise Physiology at the University of Birmingham. Dr. Anderson, welcome. Thanks for joining us here on BBC News. What are the different types of fitness, then, that they will be striving for ahead of this tournament?
12: Yeah, so I think the World Cup, in a normal game of football, we have typically two different types of fitness. We have the aerobic fitness and the anaerobic fitness. And the aerobic fitness is sort of the low to moderate intensity work that the players are doing, but the anaerobic is the higher intensity actions and the movements that they're doing.
11: So you need a combination of different things. How has the requirement of an international footballer changed over the years?
12: Yeah, so it's changed probably in line with the Premier League games and things like that, right? So the game's evolved significantly over the past 20 years. Not in terms of so much the total distances that the teams are covering, but more the high-intensity actions and that anaerobic side of the game, which is not requiring oxygen when you're moving, has actually developed significantly over the past 20 years.
11: How easy is it to overtrain?
12: It can be very easy, especially with the amount of fixtures that are in the modern game and modern football now. So players are playing every 2, 3, 4 days across a 10-month season, which can be quite demanding on the players alongside travel and different aspects of life that are coming into account with that. So recovery is definitely playing a large impact on that, and teams are investing a lot of money in recovery now to try to get that edge, to get their players on the pitch at the start of the game fresh and ready to go.
11: What does recovery look like?
12: Recovery can be multifaceted, really. So we can have things like just normal sleep and nutrition that players are sort of trying to do, and the clubs and athletes have different strategies how they can optimise that. But then there's also a lot of strategies that they can use as well. So I think it's quite commonplace, right, that a lot of athletes, they undertake ice baths, cryotherapy, foam rolling, massaging, spin bikes, and they begin to restore the function of the body after match play or tough training sessions as well.
11: And of course, they're going to be playing in some pretty hot conditions as well, aren't they? Travelling across different time zones in different climates. How do you factor that in?
12: Yeah, and I think that's one of this, from this World Cup, that's probably one of the ones which is most different about it, because the vast scale of the USA, Canada and Mexico across three countries is a huge area, and definitely the travel, the environment and the different altitudes that they may be even playing in at different stadiums, it's going to have an effect. Like, we've done a little bit of research at the University of Birmingham in the MLS, and on average, teams in the MLS travel to away games 1,500 kilometres, but that doesn't mean they also can't travel up to 4,500 kilometres, and that's just in the US as well. So then you factor that in, you factor things like training for the heat, and I think a lot of teams are doing, they've gone to the World Cup early to have those camps early, so they're trying to become acclimatized to the higher temperatures that are operating at this time of year in the US.
10: Well, interesting conversation there, talking about how do players acclimatize. Because I remember, last year, 2024, when I was with the USA women's cricket team as their assistant coach and strength and conditioning coach, that there were these conversations, because these girls were coming in from the US, जहाँ पे winter बस ख़त्म ही हो रही थी, यानी कि समझना कि मार्च के आसपास में वो लोग आए थे, एंड मार्च भी जो है ना US में काफ़ी सारी जगहों पे बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, बट यहाँ पर जब आप UAE में आते हो तो यहाँ पर आते आते गर्मी का टेम्परेचर जो है अलग हो जाता है. So we had to get those girls acclimatized, and wo conversation hamari tab se ho rahi thi when the girls were training there in the US. And mind you, some of these girls come in from some of the real cold areas of the country, USA mein, jahan par पूरा विंटर का सीज़न उन्होंने शायद अंदर ही देखा, भी उन्होंने ग्राउंड देखा नहीं, ग्राउंड की में बाहर नहीं गए, तो आउटडोर ट्रेनिंग उन्होंने नहीं करी थी. तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए वी हैड लाइक मल्टीपल सेशंस ऑनलाइन टू इंश्योर दैट यू नो दे गेट एक्लिमेटाइज्ड मेंटली फर्स्ट, कि भाई व्हाट टू एक्सपेक्ट हियर इन द UAE, यू नो रिहाइड्रेशन सोल्यूशंस ORS जो है ये सारा जो है वो एक्स्ट्रा कैरी करना होगा, वो हमारे पास ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यू नो देर आर चांसेस ऑफ दीज गर्ल्स गेटिंग डिहाइड्रेटेड, क्योंकि उतना ही सारे टाइम तक अगर ऑलमोस्ट 4-5 महीने से अगर आप विंटर्स की वजह से घर के अंदर ही रहे हो, आप ग्राउंड पे नहीं गए हो, और ऑल ऑफ अ सडन आप यहाँ की यू नो 30-32 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर में आते हो, 35 डिग्रीज ड्यूरिंग द डे, इट डेफिनेटली विल टेक अ टोल. So every person is different, every individual is different, every sport is different. And mind you, football mein 1.5 ghante tak high intensity running hoti hai. Cricket mein aap agar T20 khel rahe ho, तो जाहिर सी बात है भाई, 3-3.5 घंटे तक आपका एक्सपोजर रहता है इन द सन. सो वो थोड़ा सा अलग हो जाता है. डेफिनेटली इट इज़ नॉट एज इंटेंस एज फुटबॉल, बट समटाइम्स इट इज़ व्हेन यू बैटिंग फॉर लाइक द एंटायर 20 ओवर्स. अगर आप टॉप ऑर्डर बैटर हो, पूरी 20 ओवर आपने बैटिंग करी और उसके बाद में अगर आप विकेट कीपिंग करने आए हो, तो भाई ये भी तो चैलेंजेस है ना आपके लिए. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. तो ये एक्लिमेटाइजेशन वाला फैक्टर जो उन्होंने बताया ना भाई, बहुत सही है, बहुत ही ज़बरदस्त. यहाँ पर आने के बाद में लाइक फॉर द फर्स्ट कपल ऑफ डेज द एक्लिमेटाइजेशन आइडिया वॉज जस्ट बेसिक एक्सरसाइजेस, नॉट डूइंग हाई इंटेंसिटी स्टफ, इंश्योरिंग दैट यू नो योर मसल्स आर गेटिंग यूज टू द सन, योर स्किन इज गेटिंग यूज टू द टेम्परेचर दैट इज गेटिंग एक्सपोज टू, यू नो लोड्स ऑफ सनस्क्रीन, लोड्स ऑफ रिहाइड्रेशन. ये सारी चीज़ें हमने उनके साथ में करी ताकि दे गॉट यूज टू इट, दे गॉट यूज टू सर्फेस. वी डिड हाइब्रिड ट्रेनिंग सेशंस, वी डिड सम इंडोर ट्रेनिंग सेशंस इंस्टेड ऑफ यू नो थ्रोइंग देम आउट इन द सन स्ट्रेट अप. तो ये सारी चीज़ें हुई है. अ लॉट ऑफ वाटर वर्क्स वी डिड इन द पूल टू इंश्योर दैट द बॉडी यू नो कूल्स ऑफ, द सोरनेस ऑफ दर बॉडी वेयर्स ऑफ फास्टर. आइस बाथ्स वर मैंडेटरी टू इंश्योर दैट यू नो एलिवेशन ऑफ इन्फ्लेमेशन इज रिड्यूस्ड. फिर उसके बाद में वी वेंट इन टू एन ODI सीरीज, अ वन डे सीरीज. आप सोचो कि 50 ओवर आप ऐसी धूप में खेल रहे हो, ऐसी गर्मी में खेल रहे हो. एंड अगेन आई एम सेइंग कि फॉर यू एंड आई, आज अगर हमें जाके दिन में T20 खेलना है तो हम ठीक है सोच सकते हैं. बट अगर आप सोचो कि आप यू नो ऐसी ठंड वाली जगह से आ रहे हो जहाँ पे 5-6-7 डिग्री टेम्परेचर था और सडनली अभी आप 32-35 में आके खेलना है आपको, तो ये चैलेंजिंग ज़रूर हो जाता है. एंड दैट जस्ट एज अ लॉट ऑफ यू नो चैलेंज और इंटेंस स्ट्रेस ऑन द बॉडी एंड द माइंड when an athlete is going out to play or perform in a different geographical zone away from their own. And also, what is important over here is the magnitude of the game. अगर आप एक World Cup की game खेल रहे हो तो वो challenge जो है ना वो और बढ़ जाता है. It does not just stay as हाँ ठीक है यार, इट्स जस्ट अ bilateral series. No, I mean obviously for an athlete any game is important, but a World Cup is psychologically speaking, you know, a little more important than just another game in your backyard. So from that perspective, I think, you know, this conversation absolutely amazing and trying to understand, you know, how critical it is to stay fit and what measures are taken. And aisa nahi ki sirf, you know, hum jaise coach, strength and conditioning coach hain jo kaam karte hain athletes ke saath mein, there are doctors, there are scientists who work on with all of these, you know, athletes to ensure that there is optimum recovery after the game and optimum बॉडी सेटअप, फिटनेस रिजाइम जो है आपका, आप कितना रिकवरी हो रही है, आप कितना खा रहे हो, कितना सो रहे हो, क्या पी रहे हो, वो सारी चीज़ें जो है ना माइंड में रखी जाती है व्हेन यू आर वर्किंग विद एन एथलीट. एंड यू नो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आई थिंक यू नो साइंस हैज़ डेफिनेटली गॉन अ लॉन्ग लॉन्ग वे. आई वॉज एक्चुअली द अदर डे यू नो चेकिंग, एक बेसिक चीज़ होती है, एक बेसिक टूल होता है. जब हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग की पढ़ाई करने गए थे ऑस्ट्रेलिया, तो हमें बताया गया था कि यू नो एक सबसे बेसिक चीज़ होती है टू अंडरस्टैंड इफ़ योर एथलीट हैज़ रिकवर्ड वेल. अभी तो काफ़ी सारे वेरिएबल्स हैं, बट दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 2019 व्हेन आई स्टडीड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग. तो तभी वी वर टोल्ड कि आस्क योर एथलीट टू चेक देयर बेसल हार्ट रेट व्हेन दे वेक अप. ठीक है ना, तो आप जब उठे हो ना तभी अपना हार्ट रेट चेक करो, रेस्टिंग हार्ट रेट आपका क्या है वो चेक करवाओ. उससे आपको पता चल जाएगा कि इफ़ द एथलीट हैज़ रेस्टेड वेल, हैज़ स्लेप्ट वेल, उनकी रिकवरी सही हुई है कि नहीं है. ठीक है ना, तो ये एक चीज़ मैंने मोशन में डाल दी विथ ऑल माई एथलीट्स दैट आई वॉज वर्किंग विथ, कि दे हैड टू प्रिपेयर अ जर्नल. ठीक है ना, एक हमने क्लाउड पे एक बनाया था जिसमें एवरी वन हैड टू पुट इन एज सुन एज द वेकअप. आई टॉट देम हाउ टू चेक देयर ओन पल्स, और फिर सुबह उठते ही ना अपना आपने पल्स चेक करना है और फटाफट से रिपोर्ट करना है उस एक एक्सेल शीट में जो क्लाउड पे थी. उससे मुझे पता चलता था कि भाई कौन कितना वेल रिकवर्ड है. ठीक है, इतने फुल 100% उसमें रिस्पॉन्स, आई मीन 100% आपको पता नहीं चलता है, बट आपको मोटा मोटा पता चल जाता है कि भाई अगर आपका रेस्टिंग हार्ट रेट जो है वो लोअर है. ठीक है, लोअर द रेस्टिंग हार्ट रेट द बेटर यू आर, द मोर यू आर रेस्टेड द बेटर योर रिकवरी इज. एंड फॉर एन एवरेज अडल्ट लाइक यू एंड आई, हमारी जो है ना वो 60 से लेकर 100 के बीच में होनी चाहिए रेस्टिंग हार्ट रेट. जनरली द लोअर द बेटर ऑब्वियसली, बट 60 से थोड़ा सा ऊपर होती है, ठीक है ना, तो 70-72 नॉर्मली हमें पता होती है, बट हम अगर चेक करेंगे तो अगर जितना क्लोजर टू 60 होगा उतना बेटर होता है, ठीक है, द लोअर द बेटर. बट फॉर एथलीट्स इट इज़ फर्दर लोअर. फॉर एन एथलीट, फॉर सेमी प्रो एथलीट इट विल बी बिटवीन 50-70, एंड फॉर प्रोफेशनल एथलीट्स इट विल बी इन द रेंज ऑफ 40s, ठीक है. बट अगर अभी के अभी मैं चेक करूँ, ठीक है, मैं अभी है ना अभी चेक करूँगा रेस्टिंग हार्ट रेट ऑफ रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ठीक है, आप मैसेज करके मुझे बताओ. चलो देखते हैं आपको क्या लगता है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का रेस्टिंग हार्ट रेट कितना होगा. मैंने बताया आपको कि एवरेज अडल्ट जो है ना उसका हार्ट रेट 60-100 होता है, ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कितना होगा. 0586861003, लेट मी क्विकली सी आपका क्या मैसेजेस आते हैं, क्या आप, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा तो इस पर आप मैसेज कर सकते हो 0586861003, एंड यूल बी सरप्राइज व्हेन आई टेल यू दिस. एट 41 क्रिस्टियानो रोनाल्डो हिज रेस्टिंग हार्ट रेट, ओके, चलो मैसेजेस आ रहे हैं, देर इज दीपक का मैसेज है 52, देर इज अनदर मैसेज कम इन फ्रॉम शाश्वत, ही सेज 55, ओके, तो आप लोग 50s के रेंज में सोच रहे हो. अनदर मैसेज कमिंग इन फ्रॉम ये कौन है, संदीप कहते हैं 50-60, उन्होंने पूरा एक बड़ा रेंज दे दिया 50-60, ओके. देयर इज अनदर मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम जावेद, वो कहते हैं 52. वाओ, नाउ हियर मी आउट, उनका रेस्टिंग हार्ट रेट, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिस्टियानो रोनाल्डो एट द एज ऑफ 41 इज बिटवीन 43-44 किसी ने लिखा है, ये नाम कौन है, आपका नाम क्या है, अच्छा उन्होंने नाम नहीं लिखा है, प्लीज़ अपना नाम बताइए ताकि मुझे पता चले, बट येस दे यू आर 43-44-45 इस रेंज में रहता है. इनक्रेडिबल पीक फिटनेस, दैट इज वॉट इट इज. सो लाइक आई ऑलवेज से, द लोअर द रेस्टिंग हार्ट रेट द बेटर. एंड ये चेक करने के लिए आप सुबह उठते ही, बिफोर यू गेट अप, जंप आउट ऑफ योर बेड, बिफोर यू स्टार्ट ड्रिंकिंग वाटर, जस्ट होल्ड ऑन टू योर पल्स, मेजर इट एंड मेक अ नोट ऑफ इट, एक डायरी बनाइए, उसमें रोज लिखिए, आपको पता चलेगा कि जिस दिन आपका खुद को कि भाई मैं थोड़ा सा लथार्जिक फील कर रहा हूँ, थोड़ा सा कम रेस्टेड फील कर रहा हूँ, बट जिस दिन आपकी रेस्टिंग हार्ट रेट ऑन द लोअर साइड होगी ना, आपको ऐसा ऑप्टिमम ऐसा लगेगा, भाई आज तो मज़ा आ रहा है, सुपर फिट लग रहा हूँ. Let's do this exercise for the next week, 10 days, so that we can have this conversation again. Main hoon Neil and this is TSB Talk Sport and Business on Talk 100.3.
1: This is Talk 100.3. This is Talk 100.3.
5: Henna Speedy Hair Color, covering the changes in the world and covering changes in your hair right now. This is Fan Network News from the BBC.
8: BBC News with Moira Alderson. Iran's military says it's halting operations against Israel after the first direct hostilities between the sides in 2 months. It said it had delivered what it called a painful response to Israel, warning it against further attacks. European Union leaders have congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan on his party's clear victory in Sunday's parliamentary election. Russia has criticised what it says was Western interference in the poll. More than 30 people are now known to have died in a powerful earthquake that struck the southern Philippines. The quake triggered tsunami warnings in several countries. Peru's presidential election runoff is still too close to call. With just over 90% of votes counted, there's less than 1% between the right-wing candidate Fujimori and her left-wing rival Roberto Sanchez. Russia now has more than 3,000 people from Africa in its army, according to officials in Ukraine. Moscow insists fighters from other countries are volunteers. Amnesty International says Cambodia's high-profile crackdown on scam centres has failed to dismantle more than 70% of them. Amnesty says many interventions were ineffective, with apparent collusion between police and gangs. Scientists say octopuses have been spotted off the coasts of Scotland and Ireland. A reported surge in southern England last year was blamed for a reduction in the size of fishermen's catches. That's the latest BBC News.
5: Fan Network News from the BBC. Grey coverage, vibrant colour, natural finish. All in just 5 minutes. Henna Speedy Easy Hair Colour. Made in Italy. Talk 100.3. TSB Talk Sport and Business. Talk 100.3.
10: Hello and welcome to TSB Talk Sport and Business. I'm Neil Oja on Talk 100.3. And we're just right in the smack center of the cricketing action that's happening all around the world. And as far as cricket is concerned, Australia in Pakistan, and Pakistan winning the three-match ODI series 2-1. Incredible start to the leg there by Pakistan. But at one point in time, it looked like that things might have gone haywire if they hadn't had taken the control. To talk in detail about that series, I've been joined by Asif Khan. He's a journalist and TV anchor on PTV Sports. Asif, welcome on TSB. How are you doing today?
13: Thank you very much. I'm doing fine.
10: आसिफ, इस सीरीज के बारे में बताएं, ऑस्ट्रेलिया कमिंग टू पाकिस्तान. पहले तो ये बताएं कि माहौल कैसा होता है जब भी एक इंटरनेशनल सीरीज होती है पाकिस्तान में, यू नो, फ्रॉम अ फैन पर्सपेक्टिव किस हिसाब से वेलकम किया जाता है कंट्रीज का?
13: वेलकम बड़ा अच्छा होता है क्योंकि अभी रिसेंटली पीएसएल खत्म हुआ था
10: जी,
13: तो उसमें ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भी शामिल थे, जैसे मानस लबुशेन वो भी आए थे. तो पीएसएल के बाद वो पाकिस्तान आए दोबारा, तो पाकिस्तान में अच्छा वेलकम मिला. फॉरेन टीम्स को बहुत अच्छी तरह से वेलकम पाकिस्तान में हमेशा किया जाता है, तो इस दफा भी कोई मुख्तलिफ चीज नहीं थी. उनको उनको रखा गया बहुत अच्छी तरह, उनकी सिक्योरिटी वो स्टॉप नॉस्ट और बहुत अच्छी तरह से उनका देखभाल की गई. उनको मकामात भी कराची तो नहीं बल्कि वो लाहौर और पिंडी में आए थे
10: जी.
13: तो उनको तो इन पिंडी एंड लाहौर वहां की भी उनको विजिट कराया गया, तो देवर good, they were taken care of very well.
10: Now, you know, the hospitality of Pakistan is incredible, and I've heard this so many times from so many international cricketers that we come in contact with, and every time we speak about, you know, a tour to Pakistan, the first thing that comes to their mind apart from cricket is food. And is there a special plan ki bhai inko aur kuch, you know, cricket to jaisi ho definitely achhi honi hai, par khana ekdam zabardast hona zaruri, mezbani jo hai wo number one honi chahiye.
13: हाँ, खाने के एतबार से पाकिस्तान बहुत अच्छा है, बहुत डाइवर्स है यहाँ पर जो खाने की वैरायटी है, फ्रॉम लाहौर टू पिंडी टू कराची फॉर दैट मैटर. आप आए तो आपको बहुत वैरायटी मिलेगी खाने में. हलीम बहुत शौक से खाया जाता है, निहारी है, बिरयानी का कैपिटल माना जाता है कराची को, वर्ल्ड बिरयानी कैपिटल माना जाता है. तो उस हिसाब से वैरायटी बहुत ज्यादा है. मिर्च मसाले थोड़े ज्यादा होते हैं लेकिन वो भी अब आदि हो गए, ये फॉरेन प्लेयर्स भी आते जाते रहते हैं. तो आपको भी पता है, इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, यहाँ खाने का अलग मिजाज है, अलग किस्म का खाना होता है, और हम लोग खाने के शौकीन है सारे पाकिस्तानी, तो बड़ी अच्छी तरह से इनको रखा जाता है.
10: नहीं, बिल्कुल. अब यू नो, ये मेज़बानी की तो बात हो गई, खाने की बात हो गई, क्रिकेट की बात करते हैं. 2-1 से पाकिस्तान सीरीज जीती है. पहला मैच जो है बहुत ही ऐसा लगा कि कंफर्टेबली हाथ में आ गया था, बट सेकंड मैच में अच्छा पुशबैक दिया था ऑस्ट्रेलिया ने.
13: ये विकेट जो बनाई गई थी पाकिस्तान ने वो बहुत ज्यादा मुश्किल बैटर्स को हुई बहुत ज्यादा, और स्पिनर्स काफी ज्यादा डोमिनेट किया इन पिचेस पर. पाकिस्तान ने मैच जीत तो लिए, लेकिन देखिए पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल से मैच जीते, लेकिन बहरहाल विन इज द विन. पाकिस्तान ने तीसरी सीरीज जीती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. ऑस्ट्रेलिया में भी एक सीरीज जीती थी पाकिस्तान ने 2024 में, उसके बाद फिर अगले बरस जीती, फिर अब ये सीरीज भी जीती. तो पाकिस्तान का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहतर होता जा रहा है. इतना शानदार परफॉर्मेंस इस सीरीज में नजर नहीं आई, लेकिन इट वाज अ हार्ड फॉर सीरीज फॉर बैटर्स, और तो पाकिस्तान ने उसका बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल किया, अपने स्पिनर्स का, अपने फास्ट बॉलर्स का भी कभी कभी इस्तेमाल बड़ा अच्छा किया.
10: राइट.
13: तो पाकिस्तान जीत गया. पाकिस्तान की बहुत अच्छी कामयाबी है. ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जा रहा है कि वहां पर दो लड़के आए, उनके तीन मेन प्लेयर्स तो आए नहीं, कमिंस, हेजलवुड वगैरह
10: जी,
13: वो नहीं आए. उनके बावजूद सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी फाइट दी, उनके बॉलर्स बड़े अच्छे थे, फास्ट बॉलर तो एक खास तौर से बहुत अच्छे फास्ट बॉलर थे, जो राइट आर्म थे वो नए हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी अच्छी लेंथ पर बॉल किया. लेकिन पाकिस्तान की जीत बहुत अच्छी है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतते हैं आप, ऑस्ट्रेलिया रैंक थर्ड इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान की रैंकिंग है 6th या 5th पाकिस्तान की वनडे रैंकिंग है. तो पाकिस्तान की जीत बहुत अच्छी है, बहुत कारामद है. वर्ल्ड कप पहले पाकिस्तान हमको ये तैयारी का मौका मिला है, हमको के पिचेस मुख्तलिफ होंगी साउथ अफ्रीका में,
14: बिल्कुल
13: जिम्बाब्वे में, नामीबिया में, लेकिन जीत जीत होती है, उससे एतमाद मिलता है और पाकिस्तान इसको लेकर आगे चलेगा।
14: नहीं, जाहिर सी बात है क्योंकि जो एक मोमेंटम होता है क्रिकेट में, हम अमूमन कहते हैं कि मोमेंटम जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है, एक विनिंग मोमेंटम अगर लेके चले आप तो। बट साथ ही साथ एक चीज़ पे यकीनन खुशी होगी फॉर ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, एंड दैट इज़ बाबर आजम का फॉर्म। 3 में से 2 मैचेस में अच्छा स्कोर किया है बाबर ने, एंड दिस इज़ अ लिटिल साइन दैट यू नो एक रिलायंस जो है एक बड़े प्लेयर के ऊपर वो एक अच्छी चीज़ हो रही है राइट बिफोर द वर्ल्ड कप।
13: जी हाँ, बाबर आजम की जो क्रेडेंशियल्स हैं उस पर बात करना तो बेकार है, उस पर टाइम जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि बाबर ने अपने नंबर जो शो किए हैं उसके नंबर बहुत अच्छे हैं, वनडे क्रिकेट में, T20 में भी ही इज द हाईएस्ट स्कोरर, टेस्ट मैच में भी उसके नंबर अच्छे हैं। तो बाबर आजम, वो मैंने कहा ना, जब मैंने पहले कहा था कि पिचेस इतनी ज्यादा आसान नहीं थी फॉर बैटिंग,
14: right.
13: तो बाबर ने वक्त लिया, बहुत टाइम लिया, आपने लास्ट मैच में भी देखा,
14: जी बिल्कुल,
13: तो टाइम बहुत ज्यादा लिया, तो वो टाइम उसका लेना बनता था। वो स्ट्राइक रेट की डिबेट एक चलती है कि, लेकिन स्ट्राइक रेट हर जगह मैटर नहीं करता, जो पिच की कंडीशन है उसके हिसाब से खेलें, और बाबर यूज्ड ऑल हिज एक्सपीरियंस एंड प्लेड वेरी वेल, उसने बहुत अच्छा खेला। इस नंबर पर वो आते हैं, उस नंबर पर बहुत मुश्किल होती है मिडिल ओवर्स में स्पिनर्स को खेलना, फास्ट बॉलर्स को खेलना, तो बहुत अच्छी बैटिंग की बाबर आजम ने, उनके बारे में जितनी भी बात की जाए वो कम है। इज द टॉप, वन ऑफ द टॉप बैटर्स इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो बाबर आजम की जो कंट्रीब्यूशन थी सीरीज में वो बहुत अच्छी थी, बहुत उम्दा उन्होंने कंट्रीब्यूट किया पाकिस्तान के लिए, और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इस तरह से वो अपना कॉन्ट्रीब्यूशन जारी रखेंगे।
14: मुझे माँ सदाकत के बारे में बताइए, उनके बारे में काफ़ी बातें होती हैं, उनको भी देखा भी है रीसेंट टाइम्स में, पर आप बताएं कि इनका फ्यूचर किस तरह से आप देखते हैं एक यंगस्टर का?
13: यंग है अभी, अंडर 19 से पाकिस्तान की आए हैं, और रिसेंटली PSL ने बहुत अच्छा इन्होंने कोशिश की थी, PSL ने भी इतना अच्छा ये नहीं कर सके हैदराबाद की टीम के लिए खेले थे अभी, तो खैर कल इनको अपेंडिक्स का इनका प्रोसीजर कोई हुआ है, सर्जरी इनकी हुई है, तो वो 2-3 हफ्ते के लिए तो वो बाहर हो गए हैं। लेकिन माँ सदाकत, उसके साथ और भी बच्चे हैं, शामिल हुसैन है, उसके अलावा टेस्ट मैच में अगर देखें तो गाजी गौरी है, अब्दुल्ला फजल है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे आ रहे हैं। और फिर फास्ट बॉलर्स में अगर बात करें तो अली रजा है, हुनैन शाह है, उबैद शाह है,
14: समीर मिन्हास,
13: फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, समीर मिन्हास, यस समीर मिन्हास, अरफात मिन्हास, तो यंगस्टर्स का एक अच्छा बैच बना है। आपको मैं बताऊं, 2023 के वर्ल्ड कप से लेकर आज तक पाकिस्तान ने जो डेब्यू कराए हैं
14: जी
13: वनडे क्रिकेट में, वो 19 डेब्यू है, 19 डेब्यू,
14: वाओ,
13: मोस्ट बाय एनी टीम इन द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया ने नौ डेब्यू कराए, तो पाकिस्तान का ये तरीका रहा है कि नए नए बच्चों को चांस देता है, फिर उसके बाद अब वक्त है, थोड़ा सा वक्त रह गया है, उसके दौरान अभी पाकिस्तान ने व्हाइट बॉल का कैंप भी आज से शुरू किया है, उसमें कोई 25-27 बच्चे उन्होंने उठाए हैं, नए बच्चे भी हैं उसमें, पुराने भी हैं। व्हाइट बॉल का अलग कैंप है, रेड बॉल का अलग कैंप है, टू नेट अ टीम फॉर द वर्ल्ड कप जो आगे होने वाला है। वर्ल्ड कप एक तो 2027 में होगा नेक्स्ट ईयर, उसके लिए भी तैयारी होगी, फिर जो T20 वो जो वर्ल्ड कप अभी होने जा रहा है
14: जी बिल्कुल,
13: उसके लिए भी तैयारी कर रहा है पाकिस्तान। तो यंग बच्चों के साथ एक टीम बनाने की कोशिश है, अब देखिए इसमें कामयाबी होती है, होने की उम्मीद है कि कामयाबी होगी, और हम देखेंगे इस सूरत हाल को।
14: मैं आपसे आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, मुझे पता है आपको भी आपके शो पे जाना है, बस एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा पाकिस्तान की विमेंस टीम के बारे में, जो पूरी तैयारी करके वर्ल्ड कप के लिए भी पहुंचे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं।
13: देखिए विमेन टीम ने जो तैयारी की थी ना, वो तैयारी कराची में हमने देखी, हमारे सामने ही हुई, जिम्बाब्वे की टीम यहाँ आई थी कराची
14: जी
13: लास्ट मंथ, जिम्बाब्वे की टीम वॉज वेरी वेरी यंग, जिम्बाब्वे की टीम में जो लड़कियां थी उनमें से 2 लड़कियां ऐसी थी, एक प्रेशस जिसकी उम्र थी 42 ईयर्स, और एक उनकी और प्लेयर थी जिसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, इस वक्त 29 ईयर्स ओल्ड, बाकी जो लड़कियां थी उसमें से वो 21 साल की मैक्सिमम 19, 17, 20, 21 ये इनकी एज थी, और उनकी कोच से है जो हमारी बात होती रही, उन्होंने कहा कि वो तैयारी कर रहे हैं जिम्बाब्वे क्रिकेट के बारे में। आप अगर अभी रिसेंटली उनकी उत्थान को आप देखें तो जिम्बाब्वे क्रिकेट ने टेस्ट मैच क्रिकेट भी बहुत ज्यादा खेली है,
14: राइट
13: जो साइकिल आया है, हालांकि वो टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है, दे आर नॉट अमंग द टॉप 9 टीम्स इन द वर्ल्ड, लेकिन वो 12-13 टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं. और उसके अलावा उनके जो डायरेक्टर आए हैं उन्होंने बहुत काम किया. और आखिरी बात ये है कि उन्होंने अपनी 3 अलग अलग टीम बनाकर न्यूजीलैंड भेजी एक टीम, एक पाकिस्तान भेजी, और अब एक टीम उनकी जाती है इंडिया. और उनकी कोच के मुताबिक जो पाकिस्तान टीम आई थी ये वीकेस्ट है टीम उनकी.
14: ओके.
13: तो ये तैयारी पाकिस्तान ने तैयारी की थी और पाकिस्तान ने बहुत उनको ट्राई की, मारा, शिकस्त दी थी. पहले मैच में 2 सेंचुरीज ऑलमोस्ट सेंचुरी हुई थी 98 ये थे. दूसरे मैच में 2 सेंचुरी सदफ शम्स और फरोजा ने की. उसके बाद तीसरे मैच में पाकिस्तान ने हराया. लेकिन ये तैयारी हम उस वक्त भी कह रहे थे कि ये तैयारी सही नहीं है. आप हार गए. उसके बाद कल श्रीलंका से मैच खेला, आप हार गए. तो तैयारी बिल्कुल उस मैार की नहीं थी. पाकिस्तान में विमेन क्रिकेट बेहतर जरूर हुई है. पाकिस्तान की विमेन क्रिकेट पाकिस्तान की 1997 से वर्ल्ड इवेंट में शिरकत कर रही है. 1997 में पहला वर्ल्ड कप खेला था. तो पाकिस्तान की विमेन टीम बेहतर जरूर हुई है, लेकिन अभी गैप बहुत ज्यादा है. द टीम्स एट द टॉप एंड पाकिस्तान. तो ये जब तक आप तैयारी में नहीं करेंगे, तैयारी ठीक नहीं होगी. ये मुझे पाकिस्तान के एक साबिक कोच ने बताया था, जो वुमेन टीम के कोच थे, कि ये उनके टेन्योर में भी ये आए थी पेशकश कि आप जिम्बाब्वे से खेल लें. तो ही टर्न दैट डाउन. और वो आयरलैंड जाना, उन्होंने आयरलैंड वो गए थे और आयरलैंड में उन्होंने सीरीज खेली थी. तो ये तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कहते हैं, और उसका नतीजा आपको नजर आया.
14: चलिए, हम होप करते हैं कि कि जितनी भी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज मिली है पाकिस्तान की टीम को, उसका भी वो फायदा उठाएं एंड वी प्रोबब्ली गेट टू सी सम गुड गेम्स कमिंग आउट. बट हाँ जी,
13: एक चीज मैं टच करना चाहूंगा. कल बहुत अच्छा लगा मुझे जो आईसीसी के चेयरमैन है जय शाह साहब
14: जी,
13: उन्होंने सब लड़कियों से हाथ मिलाया जो कैप्टन है, इंक्लूडिंग द पाकिस्तान कैप्टन सना फातिमा सना
14: जी,
13: हाथ उन्होंने मिलाया. बहुत अच्छी बात है कि जैसा साहब ने ये बताया कि वो आईसीसी के चेयरमैन हैं,
14: बिल्कुल
13: बीसीसीआई से उनका ताल्लुक नहीं है. तो ये बहुत अच्छी बात है, दिस इज अ गुड साइन.
14: चलिए, गुड. सी, दिस इज व्हाट इट इज, कि फाइनली इवेंचुअली इट इज द स्पोर्ट दैट विल ऑलवेज टेक द प्राइम फोकस मोर देन एनीथिंग एल्स, इजंट इट सर? Thank you so much, Asif Saab, aapke time ke liye. Through the World Cup also, we will try and stay connected so that we can have more conversations about ke Pakistan kis tarah se perform kar rahi hai throughout this World Cup.
13: Thank you very, very much. Thank you.
14: Thank you so much, Asif Khan. He's a sports journalist and TV anchor on PTV Sports. He's heading into his own show right now. But we thought, hey, why not sneak him out and have a quick conversation about what Pakistan versus Australia, the series was, and also the preparation for the upcoming World Cup, the T20 World Cup, that's going to start in England, as far as the Pakistan women's cricket team is concerned. The first game of the T20 World Cup will be on the 12th of June, where England women's team will take on the Sri Lankan women's team. Well, this is what it is. I'm Neil Ocha. I'll take a quick break and come back right here on Talk 100.3.
5: TSB, Talk Sport and Business. Talk 100.3.
15: Need a car? The Carfair Group has you covered. From daily rentals to long-term leases and even lease to own. Sedan, SUV, luxury or commercial. Pick your ride, your way, your budget. Backed by 25 plus years of trust and 24/7 support, this is mobility made easy. Carfair Group, a legacy of trusted mobility solutions.
5: Bridge the gap between breaking news and the people it affects. Wake up to Daybreak with Muriel Deesa on Talk 100.3. With expert insights from industry leaders to authorities, real-time answers and voices that matter. Daybreak, weekdays from 7 to 11 a.m. Smart news, real conversations. Brought to you by Symbolic Developments. Only on Talk 100.3. TSB. Business advice, tips and resources. Talk 100.3.
16: Hello, I'm Nick Marsh with the BBC Business Updates. South Korea's stock market was forced to halt trading for 20 minutes this morning after the KOSPI index plunged by nearly 9% within minutes of opening. Japan's Nikkei 225 index also slid by around 4%, the most in 3 months, as shares of major tech companies fell. Today's losses were a delayed response to the sharp drop seen on Wall Street on Friday, where a sell-off in tech stocks saw values on the Nasdaq lose around 4%, its biggest drop in over a year. Meanwhile, oil prices rose on Monday, fueling concerns of inflation after Iran and Israel exchanged strikes for the first time since a ceasefire was agreed in April. Traders had ignored an announcement by OPEC Plus on Sunday that the influential oil cartel would increase output targets for the fourth month in a row. Here's Kate Durian from the Arab Gulf States Institute on that announcement.

0: output targets for the fourth month in a row. Here's Kate Durian from the Arab Gulf States Institute on that announcement.
1: That's a bit of a joke. On paper, it's an increase, but if you look at Iraq, they can't produce. You know, their production is down to about a million barrels per day, most of it going to refineries. So, I mean, the whole thing is, when you think that we're seeing a loss of 14 million barrels a day plus from the region. So I think it's more a sort of policy signal than anything else.
0: And the historic Italian fashion house Prada has announced a new collaboration with NASA as part of the US Space Agency's series of Artemis missions to the moon. Prada first partnered with NASA to help create a spacesuit worn by astronauts in 2024. The new one is an inner layer garment created with the Houston-based space infrastructure developer Axiom Space, and will feature ventilation tubes knitted into it. I'm Nick Marsh. I'll be back tomorrow with the next BBC Business Update.
2: Talk 100.3.
3: Winning by an innings and 300 runs. That is the headline of this game. India versus Afghanistan test match hua Chandigarh mein. Ek hi test match. और एक टेस्ट मैच में ये बता दिया गया अफगानिस्तान को कि भाई आपको अभी बहुत सीखना बाकी है इन द लॉन्गेस्ट फॉर्मेट इन द ओल्डेस्ट फॉर्मेट ऑफ द गेम. क्यों? क्योंकि वाइल अफगानिस्तान माइट हैव सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स, सम ऑफ द ग्रेट सुपरस्टार्स ऑफ द गेम प्लेइंग द T20 फॉर्मेट, प्लेइंग अराउंड द वर्ल्ड, बींग पिक्ड बाय franchises and loved by the franchises for the exuberance that they bring in, for the skill sets that they bring in, but jahan tak test match ki baat aati hai to wahan par abhi kafi seekhna baki hai, kafi kuch seekhna baki hai. Ji haan, 6 tarikh ko shuru hua aur aaj khatam ho gaya. India ne pehle batting kari, 564 for 8 pe declare kar diya, jisme Yashasvi Jaiswal 24 runs banakar out ho gaye, par KL Rahul ne century lagayi, Shubman Gill ne century lagayi, kaptan ne 81 runs for Sai Sudarshan missed out on his ton, and another 81 for Rishabh Pant also missing out on a ton. 19 runs Dhruv Jurel, 52 for Washi Sundar, 28 for Manu Sathar. Mohammad Siraj ne bhi 22 runs bana diye. Kuldeep Yadav ne batting karke 9 runs bana diye. So anyone who thought and doubted their batting skills, boss, this is an answer. Not out 9 runs Kuldeep Yadav, jisme ek chauka shamil tha. Mohammad Siraj ne 4 chauke ek chakka lagaya tha. 22 runs banaye 12 gendon mein. And 564 for 8 declared. As far as bowling is concerned, 6 wicket Mohammad Saleem ne liye the isme. Theek hai. Par jab Afghanistan batting karne aayi, तो फर्स्ट इनिंग्स में रहमत शाह का 60 रन वाज अ टॉप स्कोर. उसके बाद द नेक्स्ट हाईएस्ट वाज 17 बाय सादिकुल आतल, 16 फॉर अब्दुल मलिक, 12 फॉर रहमानुल्लाह गुरबज, 20 फॉर हसमतुल्लाह शहीदी. चले शहीदी का जो है सेकंड हाईएस्ट था, ओके कप्तान का. अफसर जजाई 3, 11 शरफुद्दीन अशरफ, अजमतुल्लाह उमरजाई अपना खाता नहीं खोला, खरोटे ने 4 रन्स बनाए, मोहम्मद सलीम 0 पे आउट हो गए, जियाउर रहमान 6 रन्स बनाकर आउट हो गए, 152 पे ऑल आउट इन 58.4 ओवर्स. नाउ दिस इज़ नॉट गुड फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव वेयर यू आर लुकिंग टू नॉट जस्ट एस्टैब्लिश योरसेल्फ एज अ 3 फॉर्मेट टीम, बट ऑल्सो अगर आप ODI की तरफ भी नज़र रखने की कोशिश कर रहे हो तो ये स्कोर छोटा है यार. 58 ओवर्स आपने खेले हैं और सिर्फ 152 रन्स बनाए हैं. एंड माइंड यू, दिस इज़ नॉट द टॉप ब्रांड इंडियन बोलिंग अटैक. मोहम्मद सिराज यस, बट प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुतार अपना डेब्यू कर रहे थे, डेब्यू पे 6 विकेट ले लिए, कुलदीप यादव ऑब्वियसली, वॉशिंगटन सुंदर सोचिए, तो ये 5 ही गेंदबाज डिप्लॉय किए इंडिया ने, ठीक है, जिसमें से प्रसिद्ध ने 3, मानव ने 6 और वॉशी सुंदर ने 1 विकेट लिया. उसके बाद अगर देखिए अफगानिस्तान को फिर से बैटिंग करने को बुलाया, बोला फॉलो ऑन, चलो आ जाओ फिर से करो. फॉलो ऑन का रूल ये होता है, पता है आपको फॉलो ऑन का रूल? अगर पता है तो चलो यस लिख के बता दो जल्दी से 0586861003, और अगर नहीं पता है तो फिर बोलो भाई बताओ, ठीक है मुझसे पूछो मैं बता दूंगा, ठीक है ना. अगर आपको पता है तो बोलो यस आई नो, और अगर नहीं पता है तो बोलो नो आई डोंट नो, लिख के भेज दो तो मेरे को पता चल जाएगा कि चलो ठीक है आपको नहीं पता, तो फिर मैं जो है आपको बता दूंगा कि ये फॉलो ऑन कब कैसे कहाँ होता है, क्यों टेस्ट मैच में फॉलो ऑन का रूल होता है और किस तरह से ये डिप्लॉय किया जाता है, कब डिप्लॉय किया जा सकता है. सदीकुल आटल आफ्टर बीइंग फॉलोड ऑन, उनको और अब्दुल मलिक से ओपन करवाया, पहली विकेट की पार्टनरशिप 42

0: टूरंस की रही भाई, अच्छी पार्टनरशिप, बहुत अच्छी पार्टनरशिप, जिसको तोड़ा मोहम्मद सिराज ने जब अब्दुल मलिक को आउट किया उन्होंने। उसके बाद में फिर सदीकुल्ला अतल और रमनुल्ला गुरबाज की पार्टनरशिप लगी, जो थी 32 रन्स की, 32 रन्स की पार्टनरशिप, ओके 32 रन्स की पार्टनरशिप, जिसमें गुरबाज ने 24 बनाए और सदीकुल्ला 42 पे थे जब रहमानुल्लाह गुरबाज आउट हो गए। अब ये था 19.1 ओवर्स तक 74 रन्स बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। और उसके बाद में सुनिए जी, रहमत शाह आउट हो गए जब स्कोर था 87, इनके 13 रन्स और हुए, उसके बाद रहमत शाह आउट, उसके बाद 6 रन्स और हुए तो हशमतुल्ला शहीदी आउट, उसके बाद 5 रन और ऐड हुए तो सदीकुल्ला अतल आउट हो गए, उसके बाद में 8 रन और ऐड हुए तो अफसर जजाई आउट हो गए, फिर उसी स्कोर पे अजमतुल्ला उमरजाई भी निकल लिए, 6 रन टीम के टोटल में ऐड हुए तो खरोटे आउट हो गए, और उसी स्कोर पे फिर मोहम्मद सलीम भी आउट हो गए। इसका मतलब ऑल आउट इन अंडर 36 ओवर स्कोरिंग जस्ट 112 रन्स। और अब की बार विकेट किस किसने लिए? मानव सुतार ने 1 विकेट लिया, प्रसिद्ध कृष्णा ने को विकेट नहीं मिला, कुलदीप यादव ने 3, मोहम्मद सिराज ने 1 और वॉशी सुंदर ने 4 विकेट्स लिए। तो अगर आप देखो तो कुल मिला के मानव सुथार ने 7 विकेट लिए इस टेस्ट मैच में, वॉशिंगटन सुंदर ने 5 विकेट लिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 और कुलदीप यादव ने भी 3, ठीक है, मोहम्मद सिराज को 1 विकेट मिला। अगर आप देखो तो 7 विकेट्स लेकर मानव सुथार ने आज जो डेब्यू किया, आई मीन ये टेस्ट मैच में जो डेब्यू किया, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। पर कहीं पर मुझे लगता है कि फॉर अफगानिस्तान दे डेफिनेटली नीड टू वर्क अ लॉट। There are messages that have come in के yes, we know what a follow-on is and why it is there. There is another message that's come in from Dipesh. वो कहते हैं कि हाँ नील भाई, पता है follow-on कब होता है। They're very good. They अच्छा, मुझे अच्छा लगता है कि you know when we have a very intelligent cricket loving audience जिनको पता होता है कि क्या बोलते हैं उसको, कि यू नो क्रिकेट के रूल्स क्या है, रेगुलेशंस क्या है, कब होता है follow-on, क्यों होता है follow-on, क्योंकि इट्स अ टेस्ट मैच थिंग ना भी। आज के ज़माने में जो T20 वाले उनको क्या पता है, क्या ही पता है ना। चलो मैसेजेस करो अगर आपको पता है कि फॉलो ऑन कब जो है आप इन्फोर्स कर सकते हो अपनी ऑपोजिशन टीम पे, ठीक है, या तो अगर आपको नहीं पता तो ये लिख के भेज दो कि नहीं भाई नहीं पता है, नो आई डोंट नो, नो प्रॉब्लम, सिर्फ इतना लिख दो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि मेरा तो यही काम है ना बताना सिखाना। जैसे मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम रिचा कहती हैं, नो नील, आई डोंट नो व्हाट अ फॉलो ऑन इज एंड इफ यू कुड शेयर दैट बी ग्रेट। अरे डेफिनेटली आई विल डेफिनेटली शेयर। देयर इज अनदर मैसेज दैट्स कम इन फ्रॉम कृष्णा, कहते हैं कि मुझे पता है लिखा है, मुझे पता है फॉलो ऑन टेस्ट मैच में होता है पर कब होता है ये नहीं पता। चलिए ये भी क्लैरिटी आपको मैं दे दूंगा कि हाँ टेस्ट मैच में, यानी कि बेसिकली मल्टी डे मैचेस में होता है, ठीक है ना, कि जब मल्टीपल डेज होते हैं, यू नो डोमेस्टिक में 4 दिन का भी मैच होता है, 3 दिन का भी मैच होता है, तो उसमें भी जो है फॉलो ऑन का रूल लागू होता है। बट कब होता है, तो ऐसा होता है कि जब हम टेस्ट मैच खेल रहे हैं, ठीक है, समझो कि इंटरनेशनल टेस्ट चल रही है, उसे पहली टीम ने बना दिए 500 रन, दूसरी टीम जब बैटिंग करने आती है तो वो 300 या उससे कम रन्स पर आउट हो जाती है, तो फर्स्ट टीम के पास ये ऑप्शन होता है कि वो अपनी दूसरी टीम को जो है फिर से बैटिंग करने पे इनवाइट करे, कि एनफोर्स करे, इनवाइट तो क्या करे, एनफोर्स करे कि नहीं आपको फिर से बैटिंग करनी पड़ेगी, आपने रन्स बहुत कम बनाए। द डिफरेंस इज ऑफ 200 रन्स, इट्स कॉल्ड द थ्रेशोल्ड। तो सो टू एनफोर्स द फॉलो ऑन द टीम बैटिंग फर्स्ट मस्ट अचीव अ रन लीड ऑफ एटलीस्ट 200 रन्स, कि फर्स्ट इनिंग्स में ही जो है ना 200 रन की अगर लीड होती है, 200 या 200 से ज़्यादा की लीड होती है तो ही आप एनफोर्स करा सकते हो। बट अगर समझें कि आपने 500 बनाया, फर्स्ट टीम ने 500 बनाए, सेकेंड टीम ने 301 बना दिया, ठीक है ना, 301 बना दिया, यानी कि 199 की लीड है, तो फिर द टीम नंबर 1 कैन नॉट एनफोर्स अ फॉलो ऑन, दे विल हैव टू कम इन बैट। बट अगर 200 का डिफरेंस है तो फिर डेफिनेटली दे कैन इनवाइट द टीम टू कम एंड से कि चलो आप फिर से आके बैटिंग करो, आपके ऊपर फॉलो ऑन है। बट ये 200 का जो रूल है वो 5 डे वाले टेस्ट मैच में होता है। अगर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हो जिसमें 4 डे का मैच होता है या 3 दिन का मैच होता है, तो उसमें लीड जो है वो 150 रन की होती है। क्या आपको ये पता था? अगर ये पता नहीं था तो बता दिया हमने आपको। सी दिस इज वॉट इट इज, राइट, कि हम जो है आपको इन्फॉर्मेशन जो है उस लेवल तक की देते हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होगा। आपको ये शायद पता होगा कि हाँ भाई 200 की लीड होती है जब टेस्ट मैच में तो आप फॉलो ऑन करवा सकते हो, बट जब आप 150 की लीड होती है 4 दिन के मैचेस में या 3 दिन के मैचेस में, तब भी आप फॉलो ऑन करवा सकते हो, बट दैट इज इन 3 days or a 4 day test match, a 4 day game, not in a T20, in a test match, international test match. International test match जो होता है उसमें पांच दिन का जो test match होता है उसमें कम से कम 200 की lead होना जरूरी है. कैसा लगा, है ना amazing? 0586861003 मेरा WhatsApp number, आप इसे message कर सकते हो, message करके बता सकते हो कि क्या आपको ये पता था कि 4 दिन का जो मैच होता है उसमें कितने का डिफरेंस पे आप फॉलो ऑन करवा सकते हो, या आपको अगर टेस्ट मैच के बारे में नहीं पता था कि 200 के डिफरेंस पे आप फॉलो ऑन करवा सकते हो, दैट्स एब्सोल्युटली ऑल राइट. बट या दिस इज व्हाट आई ट्राई एंड डू, ट्राई एंड गिव यू इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट. एंड ऑब्वियसली अगर कुछ लॉज, कुछ रूल्स अगर नहीं पता तो बताता हूँ मैं. देयर इज अ मैसेज दैट्स कमिंग फ्रॉम जितेश, ही सेज नील दैट वॉज अमेजिंग, आई डिड नॉट नो ईदर. वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम जितेश, नाउ यू नो. अभी आप कोई भी अपने दोस्तों के ग्रुप में बैठे हो और अगर ये टेस्ट मैच की बात हो रही है तो फॉलो ऑन की बात होगी, फॉलो ऑन पे बात करते करते आप ये 150 वाला भी आंकड़ा मार देना कि भाई तेरे को पता है टेस्ट मैच में तो 200 का होता है ना, ऐसे दिखाना जैसे सबको पता होता है, मीन इट्स कैजुअल, है ना, वैसे कि 200 का होता है ना, बट पता है 4 दिन के मैचेस में कितना होता है, जो रणजी मैचेस होते हैं उसमें कितने का होता है, वैसे करके ना हल्के में दिखा देने का अपना. और फिर बाद में अगर कोई पूछ ले कि भाई कहाँ से पता है तो बोल देना कि नील से सीखा, है ना, इतना तो बनता है ना. 0586861003 दैट्स माय व्हाट्सएप नंबर. अगर आप कॉल करना चाहें तो 800-81003, बोथ आर एब्सोल्युटली फ्री मीडियम्स टू रीच आउट टू मी. व्हाट्सएप नंबर है 0586861003. यहाँ पर अगर आप मैसेज करते हो तो आपको पैसे नहीं लगते, यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग. एंड अगर आपको कॉल करना है तो 800-81003, अगेन अ टोल फ्री नंबर वे यू डोंट हैव टू पे अ पेनी. आपके नाम मिनट्स कटते हैं ना, आपके पैसे लगते हैं, फ्री में आप उनसे बात कर सकते हो. 800-81003. आओ पूछो, नील से पूछो. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, यू कैन ऑलवेज आस्क मी, हैप्पी टू आंसर. ऑब्वियसली क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम, बाकी अगर फाइनेंस की भी बात करेंगे तो उससे भी थोड़ा सा हम जो है ट्राई करेंगे आपको हेल्प करने का. इसके अलावा इफ़ यू हैव एनी थॉट्स, एनी सजेशंस, हैप्पी टू स्पीक टू यू ऑन 0586861003. बट या दैट वाज द फर्स्ट गेम दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, इट वॉज इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान, द ओनली टेस्ट मैच to happen between these two sides. Mind you, Virat Kohli, because of his hamstring injury, will not be available for the ODIs against Afghanistan. Ab iska matlab kya hota hai? Iska matlab ye hota hai ki pehli cheez to ye ki jo 13 tarikh se ODIs shuru hone wale hain usme Virat Kohli ki jagah pe Yashasvi Jaiswal khelenge. Sabse pehli cheez. Dusri cheez ye कि जो विराट कोहली का जो होप्स थे हमारे विराट कोहली के लिए कि भाई वो 100 सेंचुरीज लगाएंगे, टोटल सचिन पाजी का रिकॉर्ड इक्वल करेंगे या ब्रेक करेंगे, उसमें बहुत बड़ा डेंट आ गया है भाई, बहुत ही बड़ा डेंट. यानी कि टीम इंडिया ने तो बीसीसीआई ने तो डिसाइड कर लिया था कि हाँ भाई चलो विराट को खिलाएंगे, क्योंकि नॉर्मली होता है ना कि अफगानिस्तान या ऐसी कोई छोटी टीमों के अगेंस्ट खेलते हैं तो फिर विराट रोहित इनको नहीं खिलाते थे. बट आप सोचो कि भाई विराट को खिलाने पर आमादा हो गई थी टीम, हाँ चलो भाई विराट को खिलाएंगे, क्योंकि शायद उनको भी बैक ऑफ द माइंड पता था कि सचिन पाजी का रिकॉर्ड, बट इंजरी के चलते विराट पाजी नहीं खेल पाएंगे. इसका मतलब है कि सचिन पाजी का ये एक रिकॉर्ड शायद थोड़ा सा दूर रह जाएगा विराट से. दूसरे रिकॉर्ड की तो क्या ही बात करें भाई, जो रूट को कोई भाई थोड़ा दूर ही रखो जो रूट को, ठीक है ना, उसकी भी बात करेंगे थोड़ी देर में किस तरह से चल रहा है वो टेस्ट मैच, क्या हो रहा है उसका, क्योंकि ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का जो टेस्ट मैच है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, कि किस तरह से वहाँ पर चीज़ें चल रही हैं सेकंड टेस्ट मैच में, सॉरी फर्स्ट टेस्ट मैच में, जो कि इंग्लैंड जो है 115 रन से जीत गया बहुत ही कंफर्टेबली. सो वील टॉक अबाउट दैट इज़ वेल. बट फॉर नाउ आई वांट टू टेल यू दैट अगर आपको क्रिकेट से लग के कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट्स है, तो एब्सोल्युटली हैप्पी टू आंसर. If you have a question, more than happy to answer. But इतना तो तय है कि भाई जो रूट वाली जो बात है वो तो मैं से दिल से आपको और मुझे कनेक्ट करती है. और पहले इनिंग्स में जो रूट 1 रन पे आउट हो गए थे, दूसरे इनिंग्स में 8 रन पे आउट हो गए, भाई मौजा ही मौजा, ऐसे ही चलना चाहिए जो रूट का. आई मीन नथिंग अगेंस्ट हिम पर्सनली, बट भाई वही सचिन पाजी वाले रिकॉर्ड की बात है कि उनका रिकॉर्ड ना तोड़े कोई यार टेस्ट मैच वाला, है ना. तो चलो उस टेस्ट मैच की भी बात करते हैं, इंग्लैंड वर्सेज न्यूजीलैंड, द फर्स्ट टेस्ट मैच दैट वाज प्लेड एट लॉर्ड्स इन लंडन. 4 जून को शुरू हुआ था और कल ख़त्म हो गया, जिसमें इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 140 रन बनाए थे. 140 में टॉप स्कोरर थे हैरी ब्रुक, 56 रन उन्होंने बनाए थे और 5 विकेट काइल जेमिसन ने ली. उनका नाम लीडर बोर्ड पे आ गया, वो ऑनर्स बोर्ड जो होता है लॉर्ड्स के वहाँ पर आ गया. उसके बाद न्यूजीलैंड बैटिंग करने जब आई तो 113 रन पे वो ऑल आउट हो गए. 38 का टॉप स्कोर काइल जेमिसन ने ही बनाया, लेकिन 5 विकेट ओली रॉबिनसन ने लिए, तो भाई रॉबिनसन का भी नाम वहाँ पे बोर्ड पे आ गया तुरंत, ठीक है. फिर इंग्लैंड जब बैटिंग करने आई तो फिर 57 रन्स टॉप स्कोरर एमिलियो गे एंड टीम टोटल 226 रन्स। यहाँ पर मुझे लगा कि भाई 254 का टारगेट अब तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा, और एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। 41 रन डेवॉन कॉनवे, 44 रन ग्लेन फिलिप्स, उसके अलावा कोई भी नहीं। 18 रन केन विलियमसन ने बनाया, बाकी सारे सिंगल डिजिट में। टॉम लेथन 0, विल ओरूर्क 0, डैरल मिचेल 0 एंड मैट हेनरी 0। चार चार तो बदगे निकली हैं। रचिन रविंद्र 8 रन बनाए, टॉम ब्लंडल ने 4 रन बनाए, नेथन स्मिथ ने 4, काइल जेमिसन ने 6, टोटल 138 रन्स। बट दैट वाज नॉट इनफ। 5 विकेट गस एटकिंसन के नाम, यानी कि 3 लोगों के नाम ऑनर्स बोर्ड पे चले गए एक ही मैच के अंदर। भाई बड़ा रेयर होता है ये होना, बट हो गया। 5-5 विकेट 3 प्लेयर्स ने लिए थे। सो ये टेस्ट मैच भी खत्म हुआ। इसमें सबसे खुशी की बात मेरे लिए तो ये रही कि भाई दोनों इनिंग्स में जो रूट जो है उन्होंने काम जो है वही किया जो अपने से एक्सपेक्टेड था उनसे, कि भाई कम रन्स बनाए, 1 रन पहले इनिंग्स में, 8 रन दूसरे इनिंग्स में, कुल मिला के 9 रन्स, और सचिन पाजी के रिकॉर्ड से दूर। बस यही सुकून मिला मुझे यहीं पर, ठीक है ना। सो ये टेस्ट मैच खत्म हो चुका है, इसका अगला टेस्ट मैच भी आने वाला है। ऑब्वियसली इट्स अ नाइस गुड लॉन्ग सीरीज। सेकेंड टेस्ट मैच जो है वो शुरू होगा 17 जून को। बीच में टाइम होता है, थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, रिकूपरेट करेंगे, और फिर तीसरा टेस्ट मैच जो है 25 जून से शुरू होगा। तो इसमें भी जो है क्या कहते हैं, हम ऑब्वियसली कीपिंग एन आई ऑन दैट टेस्ट सीरीज एज वेल। पाकिस्तान के भी मैचेस चल रहे हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। नील के साथ रहिएगा TSV पे। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे ऑन टॉक 100.3। एंड इफ यू हैव अ क्वेश्चन, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग अबाउट क्रिकेट, मोर देन हैप्पी टू आंसर। 0586861003। दिस इज अ मैसेज दैट्स कम इन। थैंक यू सो मच फॉर एक्सप्लेनिंग द फॉलो ऑन रूल। आई न्यू व्हाट अ फॉलो ऑन वाज, बट डिड नॉट नो द 200 रन डिफरेंशिएटर। क्या बात है अमित का मैसेज। अमित थैंक यू सो मच फॉर द अप्रिसिएशन एंड नाइस लॉन्ग मैसेजेस। वी कैन ऑलवेज सेंड इन दोस मैसेजेस 0586861003 माय व्हाट्सएप नंबर। नील के साथ ऑन TSV टॉक स्पोर्ट एंड बिजनेस ऑन टॉक 100.3।
1: दिस इज टॉक 100.3। दिस इज फैन नेटवर्क न्यूज फ्रॉम द बीबीसी।
2: बीबीसी न्यूज विद मोरा ऑल्डरसन। Iran's military says it's halting operations against Israel after the first direct hostilities between the sides in 2 months. It said it had delivered what it called a painful response to Israel, warning it against further attacks. European Union leaders have congratulated Armenia's Prime Minister Nikol Pashinyan on his party's clear victory in Sunday's parliamentary election. Russia has criticised what it says was Western interference in the poll. More than 30 people are now known to have died in a powerful earthquake that struck the southern Philippines. The quake triggered tsunami warnings in several countries. Peru's presidential election runoff is still too close to call. With just over 90% of votes counted, there's less than 1% between the right-wing candidate Fujimori and her left-wing rival Roberto Sanchez. Russia now has more than 3,000 people from Africa in its army, according to officials in Ukraine. Moscow insists fighters from other countries are volunteers. Amnesty International says Cambodia's high-profile crackdown on scam centres has failed to dismantle more than 70% of them. Amnesty says many interventions were ineffective, with apparent collusion between police and gangs. Scientists say octopuses have been spotted off the coasts of Scotland and Ireland. A reported surge in southern England last year was blamed for a reduction in the size of fishermen's catches. That's the latest BBC News.
1: Fan Network News from the BBC. Talk music. Brought to you by insurancemarket.ae.

0: मत बोल, आ नहीं जा रहा।
1: देखो तुम्हारे लाल लाल सिग्नल,
0: सिग्नल को तोड़ दो बात बड़ी।

0: आपने बहुत अच्छा शॉट दिया।
1: थैंक यू। मेरे लिए तो ये सब एक ख्वाब जैसा है।
0: ख्वाब तो ख्वाब होते हैं, पर ये